वेखो तुसी साका जल्ले आदे बागदा होया सी जुल्मे उत्थे खूनी रागदा ऊधम जहे जोदे उड़वा।

0: रुतबा कायम होगा तेरा, दुश्मन थोड़ा मैं यारी रख। अगला शेर है जी, खाली ना हो जेबें तेरी, खाली ना हो जेबें तेरी, फितरत तू कारोबारी रख। खाली ना हो जेबें तेरी, फितरत तू कारोबारी रख। शेर है जी, सीरत को कब देखे कोई, सीरत को कब देखे कोई, सूरत पे तू फनकारी रख। सीरत को कब देखे कोई, सूरत पे तू फनकारी रख। अपना काम निकलवाने को, अपना काम निकलवाने को, दो बंदे तो दरबारी रख। अपना काम निकलवाने को, दो बंदे तो दरबारी रख। अगला शेर है जी, दिल्ली की दरबारी छोड़ो, दिल्ली की दरबारी छोड़ो, गांव की नंबरदारी रख। दिल्ली की दरबारी छोड़ो, गांव की नंबरदारी रख। ले बैठेगा सादा पनिए, ले बैठेगा सादा पनिए, खुद में हरदम अय्यारी रख। ले बैठेगा सादा पनिए, खुद में हरदम अय्यारी रख। दिल शायर सा रखता तो, दिल शायर सा रखता तो, शब्दों की फनकारी रख। दिल शायर सा रखता तो, शब्दों की फनकारी रख। सुर्खी में गर रहना है तो, सुर्खी में गर रहना है तो, किस्से को तू अखबारी रख। सुर्खी में गर रहना है तो, किस्से को तू अखबारी रख। नेकी करके दामन भर ले, नेकी करके दामन भर ले, जाने की बस तैयारी रख, जाने की बस तैयारी रख। शुक्रिया, आदाब।
1: प्यारे श्रोतियों, पंजाब दे विच एक एहो जिहा स्थान है जिथे सतलुज ते ब्यास दरिया जिहड़े आ ओह इकट्ठे हुंदे ने, उहनां दा संगम हुंदा है। उस थां दा नां है हरी के पत्तन। हरी के पत्तन तों जदों असीं मोगा वल नूं मखू रोड ते जांदे आ, तां मखू लंघ के अगे पिंड आउंदा है पीर मुहम्मद। पीर मुहम्मद दे विच बसदा है साडा शायर वीर सिंह बीरा। वीर सिंह बीरा जी साडी काम महफिल दे विच पहली बारी आ रहे ने, उहनां दा काम महफिल दे विच निघा स्वागत है। वीर सिंह वीरा जी, जी आयां नूं।
2: ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਫੁਲਕਾਰੀ। ਨਾ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕੱਢਣ ਕੁੜੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਰਖਾ ਡਾਵੇ। ਨਾ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕੱਢਣ ਕੁੜੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਰਖਾ ਡਾਵੇ। ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਝਾਲਰਾਂ ਲਾਵੇ। ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਝਾਲਰਾਂ ਲਾਵੇ। ਚਰਖੇ ਤੇ ਤੰਦ ਪਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਟੇ ਪੂਣੀ। ਰਹੇ ਨਾ ਕਿੱਧਰੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਘੜਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੂਣੀ। ਚਰਖੇ ਤੇ ਤੰਦ ਪਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਟੇ ਪੂਣੀ। ਰਹੇ ਨਾ ਕਿੱਧਰੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਘੜਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੂਣੀ। ਤੰਮੀ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਉੱਠਣਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੌਣ ਚਾਟੀ ਚ ਪਾਏ ਮਧਾਣੀ। ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ ਲਵੇਰੀ, ਹੋਏ ਪੈਕਿੰਗ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਤੰਮੀ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਉੱਠਣਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੌਣ ਚਾਟੀ ਚ ਪਾਏ ਮਧਾਣੀ। ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ ਲਵੇਰੀ, ਹੋਏ ਪੈਕਿੰਗ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਦਹੀਂ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਖਾਵੇ।

हाय वे मेरी हाड़ा वे मेरी जान सुख दी, चन चंद्रा जदों भी चढ़ आवे। हाय वे मेरी जान सुख दी, तकदियां रहंदियां ने रामा नित तेरियां, है रामा नित तेरियां। रो रो के पीछे गईयां अखां दोवें मेरियां, वे अखां दोवें मेरियां। तकदियां रहंदियां ने रामा नित तेरियां, है रामा नित तेरियां। रो रो के पीछे गईयां अखां दोवें मेरियां, वे अखां दोवें मेरियां। गल सुन दिल धारा तेनूं कहना नी दुबारा, गल सुन दिल तारा तेनू कहना नी दुबारा हूँ।

0: साफ है तेरे दिल दा शीशा, मैली नज़र जमाने दी, जने खने नू हसदे तक के दिल नी खोल विखाई दा। कदमा विच आकाश कदे तां धरती वांगू आउंदा ए, कदमा विच आकाश कदे तां धरती वांगू आउंदा ए, खंभां दी मगरूरी विच नहीं कदम ताल भुल जाईदा। अखां विच तूं वेख लिया कर कैसे कैसे मंजर ने, अखियां विच तूं वेख लिया कर कैसे कैसे मंजर ने, टुटिया दिल अणगौलियां करके होर जख्म नहीं लाईदा। विच हनेरे तुरियां जे तूं लैके मंगवी लाठी नूं, विच हनेरे तुरियां जे तूं लैके मंगवी लाठी नूं, ए ना भुली अपना पेंडा अपने आप मुकाईदा, ए ना भुली अपना पेंडा अपने आप मुकाईदा। अपने दिल दी पीड़ वेदना सच्ची सुची पूंजी है, अपने दिल दी पीड़ वेदना सच्ची सुची पूंजी है, मंगवा हुनर कदे भी लैके बहुता नहीं चमकाईदा। लू लू पिंजिया जावे मेरा, लू लू पिंजिया जावे मेरा, माही तेरे हिजर दे नाल, तेरे दिल चों सीना निकले इंज तां नहीं तड़फाईदा। लू लू पिंजिया जावे मेरा, माही तेरे हिजर दे नाल, तेरे दिल चों सीना निकले इंज तां नहीं तड़फाईदा। शुक्रिया दोस्तों।
1: गीत कौर जी तो बाद हुण मैं सदा देण जा रहा हां, जिला शहीद भगत सिंह नगर दे जिला हेडक्वार्टर नवा शहर विखे बसदी साडी शायरा नीरू जसर जी नूं। नीरू जसर जी लिखदे ने, महकणगे गीत मेरे इक रोज फुल वांगरा, ते असीं आस करदे हां कि उहनां दी कविता इसे तरह फुल्लां वांग महकदी रहे। नीरू जसर जी, थोड़ा स्वागत है।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ तुहाडी अपनी लेखिका नीरू जसल, अते अज दुआबा रेडियो ते एक बार फिर अपनी नवी रचना लैके हाजिर होण जा रही हाँ। कबूल करना। रचना दा विशा है दीव्यां दी शाम। मैं दसना चाहनी हाँ कि मैं अपनियां मोस्टली मेरियां कवितावां जो ने वह मेरी परसनल लाइफ ते ही ने, ते ये कविता भी मैं पिछले साल उदों मेरे जहन च बनी सी जब मैं दिवाली ते रंगोली बना रही सी। सो पेश कर दिया दीव्यां दी शाम। दीव्यां दी शाम दा एक गीत गुनगुना के, दीव्यां दी शाम दा एक गीत गुनगुना के, करदी हाँ मन नू हौला रंगोलियां सजा के, करदी हाँ मन नू हौला रंगोलियां सजा के। गूंगी हवा दे विच्चों मैं एक शोर लभ लिया है, गूंगी हवा दे विच्चों मैं एक शोर लभ लिया है, धरती लई नवा मैं एक आसमां बना के, धरती लई नवा मैं एक आसमां बना के। मेरे हासियां दे ओले दा दर्द तू ना जाने, मेरे हासियां दे ओले दा दर्द तू ना जाने, तैनू भी चैन आउंदा तारियां वांग टिमटिमा के, तैनू भी चैन आउंदा तारियां वांग टिमटिमा के। महकणगे गीत मेरे एक रोज़ फुल वांगर, महकणगे गीत मेरे एक रोज़ फुल वांगर, कुदरत दे नाल ऐसा कोई राबता बना के, कुदरत दे नाल ऐसा कोई राबता बना के। करदा है तू बगावत अपने असूल दी नित,

के सुटते, प्यार वफा सब जड़ तो पुटते, पीछे कौड़ी पजदा फिरदा, पता न कोई पलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, लेखा लिखिया मेट न सकदा, हो लेखा लिखिया मेट न सकदा, की होना कल वेख न सकदा, ताही हिरदा दुखड़े चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, शरणजीत प्रेम हुण विकदा ए, शरणजीत हुण प्रेम विकदा ए, नैणे हंजू सच लिखदा ए, तुर दरगाहे लेखा देना, तख्त हिजरे दा हलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए।

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बसे ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च दो रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता जुतियां।

मैं सदा तेरे नादार उड़ाने हानी निकल गया हाँ दारोड़ा। मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मैं सदा तेरे राधा डोड़ा रेहानी निकल गया हाँ दारोड़ा। मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मेरे कुप हनेरे नू कर